नमस्कार नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर की वैचारिकता और उनके आज के समय में प्रासंगिकता को समझा। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे कबीर ने दुनिया में सबसे ऊंचा माना है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। श्रोताओं, आज हम उस दुविधा की बात करेंगे जो हर साधक के मन में उठती हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हों और बगल में आपके गुरु। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा को द समाधान दिया है। रिपीट, आप असमंजस में पड़ जाएं कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा का जो समाधान दिया वह पूरी मानवता के लिए कृतज्ञता का सबसे बड़ा पाठ है।

इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए, और फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु पर न्यौछावर होता हूँ। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त हैं, वह हर जगह हैं, पर हमारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। वह गुरु ही हैं जिसने हमारे विवेक की आंखों को खोला। गुरु वह प्रकाश बिंदु हैं जिसके बिना हम उसे विराट गोविंद का कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए कबीर के लिए मार्ग अर्थात गुरु का महत्व गंतव्य अर्थात ईश्वर से पहले आता है। गुरु वह द्वार हैं जहाँ से ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं का अंबार है पर दृष्टि नहीं है, तब कबीर की यह बात और भी जरूरी हो जाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान अर्थात ज्ञान को पाने से पहले उस मनुष्य को पहचानना जरूरी है जिसने हमें सत्य का रास्ता दिखाया।

अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। सत्य की खोज से पहला कदम गुरु का हाथ थामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जोजे वांचील तो ते लाहो प्राणी जात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया, विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा, और ये सब होने के बाद जोजे वांचील तो ते लाहो, हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है, क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा, सतयुग कैसे आएगा, या स्वर्ग जिसको कहते हैं, या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे, ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्मे सूर्ये पाहो, फिर जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। जब ये होता है तो क्या होगा, तो बाकी जो अभी ओवी है, बाकी जो लाइनर्स है, तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है, और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है, जो कारण है, और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। वर्षत सकल मंगली, वर्षत मीन्स वर्षा, शॉवर, जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो गर्मी है, तपत है धरती की, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडा ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है, शरीर तो तपता ही है, वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है, धरती तपती है, और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह, कब आएगा, क्या होगा, बारिश कब आएगी, हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं, पक गए हैं, और कहीं ना कहीं शांति की, शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली, और कैसे है, ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है, वर्षा एक्चुअली उपमा दी है, वर्षत सकल मंगली, मंगल, वर्षत सकल मंगली, इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की, सद्भावना की, या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। ये कैसी हो सकती है वर्षा? वर्षत सकल मंगली, और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, मंगल, और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, मंगल मुहूर्त, मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल, हर कुशल मंगल बोलते हैं, किसी का अगर कुशल मंगल है ना, सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है, यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है, और किसी लड़की के जन्मपत्री में या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है तो कितनी तकलीफ होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है, कभी मंगल है कभी अमंगल है, मंगल वही है,
लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन माउली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावनाओं की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे। और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प। हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पज है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो माउली जो है, ध्यानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको बौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मान दियाड़ी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मान दियाड़ी। मान दियाड़ी, मान दियाड़ी मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांदियाड़ी मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा। और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांदियाड़ी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी। और वो मांदियाड़ी क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है कैसी भी परिस्थिति आने दो विश्वास अटूट रहता है, और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा में ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे। और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए। और ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी, हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए ज्ञामाउली ने कहा है वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता। इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

नमस्कार, ओम शांती। वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकळ मंगळी, मांगल्य का वर्षा, वो भी सदा हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि माउली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवा सारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं। या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठान ची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठान ची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर। तो क्या होगा? खुशी होगी ना? तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है।
तो उसकी शुरुआत जो है हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है। चलां कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्पतरुन से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है, या ऐसे ही कवि कल्पना है। क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है, लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल साइक्लिक है। सृष्टि चक्र बोलते हैं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग, जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है। वो चल रहा है, चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया। अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है, उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेलाहु प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, विश्वारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तो तेलाहु प्राणी जात,
वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलां कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलां कल्प तरुन से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलां कल्पतरुन से आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंतामणिन से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर की वैचारिकता और उनके आज के समय में प्रासंगिकता को समझा। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे कबीर ने दुनिया में सबसे ऊंचा माना है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। कबीर कहते हैं कि गुरु केवल अक्षर सिखाने वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वह चेतना की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक है। श्रोताओं, आज हम उस दुविधा की बात करेंगे जो हर साधक के मन में उठती हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हों और बगल में आपके गुरु। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा को द समाधान दिया है। रिपीट, आप असमंजस में पड़ जाएं कि पहले किसके चरणों में शीश झुकाऊं। कबीर ने इसी मीठी दुविधा का जो समाधान दिया वह पूरी मानवता के लिए कृतज्ञता का सबसे बड़ा पाठ है।

इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए, और फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु पर न्यौछावर होता हूँ। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त हैं, वह हर जगह हैं, पर हमारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। वह गुरु ही हैं जिसने हमारे विवेक की आंखों को खोला। गुरु वह प्रकाश बिंदु हैं जिसके बिना हम उसे विराट गोविंद का कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए कबीर के लिए मार्ग अर्थात गुरु का महत्व गंतव्य अर्थात ईश्वर से पहले आता है। गुरु वह द्वार हैं जहाँ से ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं का अंबार है पर दृष्टि नहीं है, तब कबीर की यह बात और भी जरूरी हो जाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान अर्थात ज्ञान को पाने से पहले उस मनुष्य को पहचानना जरूरी है जिसने हमें सत्य का रास्ता दिखाया। आज का चिंतन इस दोहे से ये निकलता है कि दोस्तों, आज के दिन बस एक पल रुककर सोचिएगा कि आपके जीवन का वो गुरु कौन है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, आपका शिक्षक या आपका कोई अनुभव। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। आज अपनी सफलता का श्रेय उस मार्गदर्शन को दीजिए। सत्य की खोज से पहला कदम गुरु का हाथ थामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया, विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा, और ये सब होने के बाद जो जे वांछील तो ते लाहो, हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है, क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा, सतयुग कैसे आएगा, या स्वर्ग जिसको कहते हैं, या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे, ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, फिर जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। जब ये होता है तो क्या होगा, तो बाकी जो अभी ओवी है, बाकी जो लाइनर्स है, तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है, और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है, जो कारण है, और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। वर्षत सकल मंगली, वर्षत मीन्स वर्षा, शॉवर, जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो गर्मी है, तपत है धरती की, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडा ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है, शरीर तो तपता ही है, वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है, धरती तपती है, और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह, कब आएगा, क्या होगा, बारिश कब आएगी, हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं।

पक गए हैं और कहीं ना कहीं शांति की, शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली और कैसे है, ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है, वर्षा एक्चुअली उपमा दी है, वर्षत सकल मंगली, मंगल वर्षत सकल मंगली, इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की, सद्भावना की या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। यह कैसी हो सकती है वर्षा? वर्षत सकल मंगली, और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, मंगल, और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, मंगल मुहूर्त, मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल, हर कुशल मंगल बोलते हैं, किसी का अगर कुशल मंगल है, मंगल है ना, सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है? यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है और किसी लड़की के जन्मपत्री में या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है तो कितनी तकलीफ होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है, कभी मंगल है कभी अमंगल है, मंगल वही है लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन माउली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं, जिनको हम संत कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावना की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे, और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प, हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पज है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो माउली जो है, ज्ञानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको बौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। मांदियाळी, मांदियाळी मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांदियाळी मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा, और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांदियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। और वो मांदियाळी क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स
सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है कैसी भी परिस्थिति आने दो, विश्वास अटूट रहता है और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा मीन्स ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए और ईश्वर निष्ठांची मानदियाड़ी हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए ज्ञामाउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मानदियाड़ी, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे दुरितान से तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मानदियाड़ी अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, ओम शांती। वर्षात सगळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकल मंगळी, मांगल्य का वर्षा, वो भी सदा, हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि माउली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवा सारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं। या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसी ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वर्षत सकल मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर, तो क्या होगा? खुशी होगी ना। तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है।
तो उसकी शुरुआत जो है हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है, चलांकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्पतरुण से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है या ऐसे ही कवि कल्पना है, क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजय, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है। वो चल रहा है, चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया, अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेलाहो प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, विश्वारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तो तेलाहो प्राणी जात,
वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वे सुखन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित दुख मापनीया। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलांग कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलांग कल्प तरुण से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलांग कल्पतरु उनसे आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंता मणिन से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।